चाय, अच्छी चाय, वाह वाह, चाह चाह, क्या चाहते हैं हम अब चहता ना, अगर कुछ चाहते थे तो अब कुछ कर लो इसके बारे में, अच्छा टाइम है, कल तो कल है, आज